महा ठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिया कर डोले, द रोप हैव इन हैंड टू हैंग यू अप, बट टिल दैट सी हैव वेरी स्वीट लैंग्वेज, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, हाउ टू कैच यू, एंड देन यू आर होल्डिंग लाइक दिस स्नेक इन योर हैंड्स। सो दिस माया, दिस संसारास, देयरफॉर इट इज सेड पतन और उत्थन, दो बोथ हैज बीन सॉन। सो भगवान विष्णु सेड, लक्ष्मी देवी गॉडेस, लेट्स गो बैक टू अवर वैकुंठा, दैट इज मच बेटर, सम टाइम टू टाइम नो नारदा कम्स, दैट्स ऑल। एंड सो केम देयर एंड दे वेंट, सो बट बोथ वन सीड, सो द रूट्स आर इन वन, बट वॉट इज प्राउड केम आउट, वन इज दिस एंड दैट। सो वॉट इज दैट वन? वन इज कॉल्ड संघ, संघ मीन्स कंपनी, कंपनी। नाउ विच काइंड ऑफ कंपनी यू हैव, नेगेटिव वे और स्पिरिचुअल पॉजिटिव वे? नाउ दिस इज कॉल्ड ओनली वन वर्ड, संघ। नाउ इन द वन वर्ड, वन लेटर, संघ। नाउ बिफोर संघ इफ यू राइट सत, व्हाट बिकम्स? सत्संग। एंड इफ इंस्टेंट ऑफ द सत यू राइट कु, व्हाट हैपन्स? कुसंग, बैड सोसाइटीज। सो रूट इज देयर, बट हाउ नाउ द ब्रांचेस विल डेवलप, दिस साइड और दैट साइड? सो इन द कलि युगा इज अ वेरी वेरी हार्ड, डिफिकल्ट टू गेट गुड संघ। देर इज अ लॉट ऑफ स्वीट वर्ड्स, देर लॉट ऑफ ट्रिक्स, एंड बट एट एंड देर विल बी नथिंग। सो दिस वन भजन वॉज महाप्रभु जीज, देन आई विल नॉट ट्रांसलेट ऑल, अदरवाइज मॉर्निंग आई हैव टू सर्व यू ब्रेकफास्ट हियर। सो देर फोर सजन वाली लागे ओ सदाई सत्संग, सजन प्यारे लागे सदाई सत्संग, सुरती और समर्ती

सत्संग ओ सज्जन वाली लागे ओ सदाई सत्संग। ओ माई डियर वन, ओ माई फ्रेंड्स, आई लव सत्संग। श्रुति और स्मृति गावे, श्रुति व्हाट इज स्पोकन, स्मृति व्हाट इज इन मेमोरी। दिस इज फ्रॉम वेदास, श्रुति स्मृति। श्रोता श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, दिस मेनी डेफिनेशन आई विल टेल यू आफ्टर। सुख बैंकुंड स्वर्ग नहीं दुर्लभ, दुर्लभ है सत्संग। सुख बैंकुंड स्वर्ग।

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

श्रीदीप नारायण भगवान की, श्री सुदेव पुरुषा महादेव की, हिमालयन अवतार श्री अलक पुरुषा महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट परम श्री स्वामी माधवानंद पुरी जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परम श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए, मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में, जिसके निमित्त आयोजन है, ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री उदित नारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा,

भाई, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें ये सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं। पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है। तो वो भी बच्चों का पालन करती हैं। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से कि हम

उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया मैं तुमको कैसा दिखता हूँ। अब उसे न संतों से मतलब था, न किसी से मतलब था। उसने कहा, महाराज आप तो हमारे जो गांव में बूढ़ा पाड़ा है ना, वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा, अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो, मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, यह नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी 1 साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ? बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी। मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ? महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज जी ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जा कर के फिर वापस आए। तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरु जी आए और आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं? परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही उन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं? एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है। तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज? रहते हैं तो, क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ददामि तम, जो अर्जुन है अर्जुन, उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं। तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ? मैं अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं। वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज, जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं। तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर। संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया। तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है। यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आ करके रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती? महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए।

ऐसी कल्पना की, तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसे कल्पना की, सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली, कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसे ही कल्पना की महाराज, शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनारायण भगवान ने की। तो महाराज परम पिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं, वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं? धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब हैं, देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है, एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा, और जो जो कल्पनाएं की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, इसलिए हमको समझने की कमी है। ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है? देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना, तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं, एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते? लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है? बताओ, पता है ना? तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था? भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया, तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी? एक ही नाव है, और दूसरी बात एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे? प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए, तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते हैं तो महाराज कुछ देना ही होता है आपको, कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है? सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे ही भगवान देने लगे तब केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

हरिओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं, आप लोग प्रसाद लेकर के आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए। हमेशा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से जो मिला है, जो मिला है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य क्या है, सत्संग, सत अर्थात सत्य, जो सत्य है उस सत्य का संग करना, उस सत्य के साथ रहना, उस सत्य के साथ जीना, उस सत्य के साथ चलना, यही क्या कहलाता है, सत्संग। तो सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा नहीं, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है, क्या आप, हम, जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है। देखो आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं, ये तो सत्य नहीं, सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, सपना है। कौन कह रहे हैं सपना है, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं,

जय जय राम। भगवान शिव कह रहे हे उमा हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, भगवान का भजन, भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब ये तो जगत क्या है, सपना है। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ, सामने तो दिख रहा। महाराज सपना वो होता है जो हो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा हो भी रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ। सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा है वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है, क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है, और जो तीनों कालों में भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, परमपिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार है, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे। हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराएं।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते। तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान, आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, माँ प्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, वर्षा करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को। दीप नारायण भगवान की जय।

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।

You came to the sleeping level. You were awakened, and how did you smoothly enter into the sleep? If you can research this and become aware about that, how you are sleeping, that second, ये तो second की बात है. They said, the driver said, micro sleep. माइक्रो स्लीप से एक्सीडेंट होता है ना, थोड़ी सी आंख की जोखा आया और एक्सीडेंट हो गया. सो इट इज फ्रॉम अवेकन टू द स्लीप. जस्ट वी गो इन द बेड, पुट अवर हेड ऑन द पिलो एंड सेड नाउ आई विल स्लीप. बट व्हेन डिड यू कम टू द स्लीप? दिस इज द वर्क of the yogi. अच्छा, okay, doesn't matter. आप आ गए, गहरी निंद्रा के अंदर हैं आप. Suddenly you are in Chicago. From New York. Dream. Swapnal. So how did you went out of this physical body through the astral body? You are in the Chicago in the temple. Beautiful new temple, and you are doing aarti and etc. Swapna. How did you went this? Amara sukshma sharir, stool sharir se bahar kaise nikla? Aur kahan chala gaya? Kis speed se gaya? Kahan to Chicago aur kahan New York? और न्यूयॉर्क के अंदर में भी क्वींस, और क्वींस के अंदर भी शिव शक्ति मंदिर, और शिव शक्ति मंदिर के अंदर भी ऐसे देवता, बड़े महापुरुष ईश्वरीय विभूति हमारे हरिश्चंद्रपुरी जी महाराज और आशीर्वाद दे रहे हैं सभी को. पार्टी जी देखिए मिराकल्स. बट नाउ यू आर इन शिकागो. कैसे गए? हाउ? What kind of transport you took? और क्या होता है कि मच्छर काटता है, suddenly mosquito bites you. You wake up within no time. Chicago से यहां किस स्पीड से आप आए और जागृत हो गए, स्वप्न से जागृत. So yoga समाधि, getting a higher consciousness in samadhi, first you have to mastery, awaken, sleep and dream. Jagrata, sushupta and swapna. Swapna. Swapna kya hai? Swapna is our reality. The dream is our reality. It is that reality which we cannot realize, and we dream, and we try to fulfill our desires through the dream. Yes, Kamlesh ji, sahi baat hai na? Ab kya hota hai ki wo sajan jisko ice cream khana tha raat ko aa gaya swapna jor se. Oh, Maharaj. क्या कहना है, इतना बड़ा कटोरा भरा हुआ आइसक्रीम जिसमें पिंक है, येलो है, व्हाइट है, छोटे छोटे लड्डू की तरह. सो नाउ ही इज ड्रीमिंग इन अ नाइट. हिज वाइफ सेड इन हिम इन द ड्रीम, डार्लिंग सेड, नाउ यू आर हेल्थी, लेट्स गो एंड हैव आइसक्रीम. ही सेड, ओ माय डियर, thank you, I will pay you today ice cream. She said, let's go. He is dreaming. Now they went to the shop. They sit there on table chair and order the ice cream. Bowl, very big, beautiful bowl. Can you imagine, children?

Yes, it is. Yes, you didn't give me ice cream. Yes, you were dreaming. I said, yes, I was dreaming. Then the psychologist said, okay, finish today's. Our talk is finished. I would like to go with you for a little bit in the market. Let's go. And he lead them to the ice cream shop and sit there. And all three of them said, let's enjoy the ice. They ate the ice. And he was so happy, no any more depression. So this is our mind. Therefore, yoga is that kind of science of the body, mind, and consciousness. So the mind. So Kundalini, Ida, Pingala, Sushumna, and the fourth one is called Vajranadi. Vajranadi begins from the small and big toe. Vajranadi controls our immunity in the body. Vajranadi controls our Ida, Pingala, Sushumna. Vajranadi controls our heart that we don't get a heart attack, and also brain hemorrhage. Vajranadi begins from the big toe and second toe, and it goes through and is supporting the Sushumna Nadi. Like when we build a building and we have earthing cable. So Vajranadi is like an earthing, so there is no any bad things, attack happens to our body or mind. And therefore, you have to practice those certain postures of yoga that you can avoid such accidents. Mind. Let's come to the man. Man kya hai? Man lobhi, man lalchi, man chanchal, man chor. Man ke mate mat chaliye, ghadi palak, man on. Man lobhi, man lalchi, man chanchal, man chor. Man ke mate na chaliye, ghadi palak, man on. Mind is a greedy. Man lobhi, man lalchi. Mind is full of the desires. Man chanchal, mind is restless. And man chanchal, man chor, and mind is also the thief. No? Chori kari deta hai. Bhagwan Krishna bhi usko nahi rok sakta hai, chori karne mein man makhan chor deta hai. पता है भगवान को कि मक्खन चोरी कर दिया और हमारी मैया को जाकर के वो सभी शिकायत करेंगी. तो मन चंचल, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर. मन के मते न चालिए, डोंट फॉलो योर माइंड, क्योंकि माइंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. दैट्स इट. व्हाट इज अ माइंड? मन का देवता चंद्र. दैट्स वाई बिसाइड मी हरिचंद्रपुरी जी महाराज. देखिए, वो हमारे देवता है. ही इज कंट्रोलिंग. इसीलिए तो ऐसे महान पुरुष पास में बैठते हैं तो हमारे को सावधानी से बोलना पड़ता है. एवरीथिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द माइंड इज द मून. एंड मून इज एवरी डे व्हेन मून कम्स आउट और मून राइजेस नेवर इक्वल. चंद्र हमेशा एक सरी का नहीं आता है, घटता बढ़ता रहता है. वैसे मन जो है संकल्प विकल्प करता रहता है. यही मन का धर्म है, क्योंकि मन चंद्र से मिला हुआ है. एंड मून मीन्स इमोशन. इन मोशन यू आर ऑल द टाइम्स इन द मोशन.
emotion. And emotion means water. So, चंद्र जो है पानी का प्रतीक है और वो जल जो है पानी वाटर, वो वाटर इज चंचल मूविंग, देर आर द वेव्स, सो यू आर इन द मोशन इज द इमोशन. बट व्हाट काइंड ऑफ मोशन यू हैव, सम टाइम इज ए हॉरिकन, अरे वाह, फ्लड. राजा योगी अग्नि जल, जिसकी उल्टी रीत. राजा योगी अग्नि जल जिसकी उल्टी रीत. सावधान से परशुराम जी कह रहे हैं कि थोड़ी देखे प्रीत, इनसे आप ज्यादा दोस्ती मत करना. राजा भी ठीक है, कभी होते होते वो लगा देता लात. हाँ, वो नेता होता है ना, नेता तो टिकट की समय तो आएंगे, हाँ बाबूजी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, ऐसे सब है. जीत गया उसके बाद तो हाथ नहीं मिला था क्या, टेलीफोन भी नहीं मिला था. ये बातें होती है. माइंड, नाउ व्हाट इज द माइंड. सो माइंड हमारा जो है, माइंड इज लाइक ए कैमरा. He's getting all the information and transferring to the subconscious. And what is the hidden written in the subconscious brings up and gives to the consciousness, intellect, buddhi. And what is a buddhi? Buddhi ka dharma kya hai? Buddhi ka dharma hai uska जजमेंट देना. सो इंटेलेक्ट गिव्स द जजमेंट एंड माइंड ब्रिंग्स एंड गोज, देयरफॉर माइंड हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज ओनली कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग. दैट इज अ माइंड. इंटेलेक्ट इज गिविंग जजमेंट, बट विवेका दैट इज विच लीड्स अस फर्दर. सो योगा, आसनास, प्राणायाम, चक्रास, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्रार, दिस आर द एट चक्रास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी. तो योग अनंत है, अनंत हरि कथा. साथ में आता है आसन, आसन प्राणायाम, ध्यान, धारणा. तो आसन कई प्रकार के आसन कहलाते हैं. ये महाराज श्री का जो ये गद्दी बिछी हुई है, इसको भी आसन ही कहते हैं. महाराज जी आपके आसन पे बैठिए, वो भी आसन है. आपका आसन कहाँ लगेगा, रात को सहन कहाँ करोगे, वो भी आसन है. और पोस्चर्स जो है वो भी आसन है. आसन की परिभाषा बहुत कुछ है, लेकिन मेडिटेशन करते समय काया स्थैर्यम, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, फिर मेडिटेशन होता है. ये गिलास पड़ी है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास स्थिर है, पानी भी स्थिर है. गिलास इज मोशनलेस, द लिक्विड इनसाइड इज ऑल्सो मोशनलेस. But as soon as I take, glass is moving, liquid is moving. Similarly, if our body is comfortable and motionless, our mind is also steady. Sankalp Biklap ke andar mein dheere dheere dheere dheere dheere dheere aata jata hai, phir meditation ho jata hai. So that's a long way. Asana. अब आपको थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं तो स्वामी जी कहेंगे बाबा जी को माइक दिया और पता नहीं कब तक पकड़े रहेंगे. तो अब बस हो गया पूरा. धीरे से आपको कुछ बताता हूं, सभी बैठे हैं. अरे आए तो खाली बातें करने से कोई भूख थोड़ी मिलती है, मिटती है भूख, मिटती है क्या, बातों से भूख नहीं मिटती है.
बात करने से पेट नहीं भरता है. टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग. टन्स ऑफ थ्योरी

0: वो भूखे के बेचारे के पेट के अंदर में आवाज हो रही है बादल की तरह, लेकिन आया क्या, कुछ नहीं आया। डपोट संघ का नाम सुना आपने? आप लोगों ने डपोट संघ का नाम सुना? महाराज जी आपने सुना?
1: नहीं, अभी तक नहीं सुना।
0: सुना दूं? हाँ देखिए, ये भी तो बात है, हमारे मारवाड़ में, गुजरात में, हिंदुस्तान में कहते हैं डपोट संघ। कावत है कि नहीं? तो डपोट संघ की बात कर देता हूं, फिर आपको फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा, ठीक है? एक आई एम ट्रेलिंग इन हिंदी, ओके, सो दैट आफ्टर यू विल आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, सो टू क्रॉस आई विल मेक समथिंग कॉमेंट्री वेरी क्विकली सो यू विल अंडरस्टैंड। एक गरीब आदमी था, गरीब था, काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है। तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे। समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है? शिव नाम।

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं, ये शंख इतना चमत्कारिक है। ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है, आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये। अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि हे प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मुला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ कि वहां वो शंख लेकर के गांव की तरफ, घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 4-5 दिन के बाद, आइए 4-5 दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोचारी, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोचारी। अरे एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है, कि हम किसी न किसी संकट

संकट में है तो दोस्त के वहां गया तो दोस्त कहा, अरे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहां चले गए थे? कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा, शंकर दादा मर गया क्या? हाँ मर गया बापू, तो निशु गया शंकर दादा, निशु कहिए लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहू। अच्छा, अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे हैं क्या? अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के आठ और मैं नौ, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आ गए। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही है, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आ करके वो ठका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख को तो निकाल दिया और वो जो नकली से लेके आया उसको उसके झोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं। अरे शंख भगवान, कराओ ना। क्या कराए? और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका शंख? अरे बेटा, तेरा शंख वो चुरा गया तेरा दोस्त, असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूं अब? क्या करे क्या, मैं दूसरा शंख देता हूं। अरे वो क्या करता है शंख? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा। कि वो क्या है भगवान? कि मांगना 1,000 रुपया तो वो कहे 1,000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है। शंख बोलता है 1,000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, 1 ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो। के लाओ देओ, कि क्या धक्का दे? धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना। अरे तू क्या नहीं दे रहा है? कि नहीं, मेरा नाम है डपोल शंख। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी? बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे 1 और दे अनेक। कि यह ऐसे कैसे हो सकता है? कि देखिए, हे शंख भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए। तो भगवान शंख देव कहते, अच्छा भक्त, आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा? 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ, 10 सोना आ जाएगा। कि बस बस बस बस, इतना ही चाहता था भगवान, उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये शंख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए, तो बोला कि अब तो कोई शंख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला शंख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया और ये नकली शंख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के 1 टन ले ले भाई? कि हाँ दीजिए, कि क्या धक्का दूं?
अरे ये क्या है कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है कि मेरा नाम है डपोल संघ। तो तब से डपोल संघ बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता है। क्या साहब जी? डपोल संघ। तो डपोल संघ जो था आ गया चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना? कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल संघ वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो ही वेंट टू द बीच, वॉज सिटिंग नियर द ओशन एंड ही वॉज सिंगिंग शिवाज नेम, नमो शिवाय नमो शिवाय। शिवा अपियर्ड, से भक्ता माय डिवोटी ब्लेस यू, व्हाट यू वांट? ही सेड आई वांट मनी, आई वांट दिस दिस, आई एम वेरी पुअर। सो भगवान सेड ओके, आई गिव यू दिस कॉन्स एंड व्हेन एवर यू वांट समथिंग टेल दिस कॉन्स, मेक पूजा, क्लीन फ्लावर्स, इंसेंस एक्सेट्रा एंड देन you will prayer and he will give you everything, money, food, cloth, anything. Thank you Lord, thank you, thank you. He went, on the way he had one friend, he stayed overnight there, and what he told the friend, what is this? So in the night the friend took away the real coins and put in the fake coins, and then the man went next day. After a few days he reached his village and he said, village people, now I have a siddhi, perfections, God gave me everything, now I invite you all for the lunch, a beautiful buffet. So he said, hey Shankadev, oh Lord, please provide the best food for all. And then nothing happened. Because the real coins he took it away. So man was disappointed very much and he went again to the ocean, and then Shiva gave him another one, and that one is that whatever you ask to have, if you ask for $1,000, he said, no, take $5,000,000. So you don't have to ask always. So he said, okay, give me please. He said, what? I can't give you anything, I'm only speaking. I'm not giving. Only promising, but there is nothing. So that is in Rajasthan, in Hindustani language, is some kind of a joke. So you know why? Because people are sleeping. And then Swamiji gives such a nice chutkla. Wo chutkla kya hai? Wo bhojan ke andar chutney. चटपटी, चटनी किया तो वो जिह्वा के अंदर में फिर स्वाद आ गया। ऑलराइट, नाउ एक्सरसाइजेस। ऑलराइट, तो आप सीधा बैठे, वेरी गुड, सिट स्ट्रेट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। Now, stretch your legs. बिल्कुल सावधान, आपको बिल्कुल हल्का एक्सरसाइज बता रहा हूं, बट इज पावरफुल, ठीक है? सो
सो कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी पे बैठे रहे, घुटने को जोड़ दो, यस, और लेग्स लिटिल स्ट्रेट आउट, पैरों को थोड़ा लंबा कर दो, बहुत अच्छा. इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप एंड इंटरलॉक योर थम्स, स्ट्रेच योर हैंड्स मोर अप, तो ये साइड मसल्स स्ट्रेचिंग, एंड हैंड्स डाउन, हैंड डाउन ऑन द थाइज. Once more, inhale and exhale. Inhale exhale. Inhale. And look up to the ceiling. Exhale. Now, inhale and stretch your hand sideways. And above the head. Exhale in the front. Hands down. One, inhale. Exhale. याद रखना, बोलना मत. श्वास लीजिए एक और दो. दूसरा था एक और दो. अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और कोहनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए, घुमाए, एक श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए.

0: और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन तो ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने थूली को सीना पे लगाइए टच योर एंड कम अप टच द चिन टू द चेस्ट And inhale up. Good. 10 times. Swas lena, sir ko dekhi upar aur swas chhodte hue Jalandhar band. Akashi mudra aur Jalandhar band. Bahut acha, bahut hi acha. Ab पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों के अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है पैरों में दर्द हो रहा है ये सब चला जाएगा दर्द भग जाएगा कहीं एक दो वन अंगूठा पकड़ो अंगुली पकड़ो सब टू वन टू अब एक स्ट्रेच योर टोज टूवर्ड्स द फ्लोर इन द फ्रंट ऑफ यू एंड इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल इसको भी 10 बार इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए अब इसे एक सर्कल बनाइए वन टू थ्री फोर फाइव Other direction, one, two, three, four, five. बहुत अच्छा पैर पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए एक और धीरे धीरे आगे झुकिए जितना झुक सके अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल श्वास लेते हुए वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे एक श्वास लीजिए दो श्वास निकालिए तीन श्वास लीजिए ऊपर चार श्वास जोड़िए और अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए जैसे नैया को नाव को चलाते हैं ना एक चार स्लोली पांच। अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज। एक मुट्ठी बांधिए, खोलिए, दो, यस, नाव को चलाते रहिए, क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा। उसका एक उदाहरण बताता हूं, आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है, वाह। अरे महाराज जी, इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में, अरे वाह। अब इसको बंद करें या खोले, मुट्ठी को बंद करें और खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। वही देखो, खाने का बढ़िया हो तब मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है, जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी। इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा देखिए हाथ को, लुकटिया पान, सीधा बैठो भाई, हाँ, नाउ स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके, टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस, and now only open the palm, the left hand, and look to your palm and tip of the fingers, but right hand is holding your wrist. Dekhiye aapka haath bilkul looks like a pail. Ab dekhiye haath ko aur dekhiye, anguliyon ko dekhiye, look your fingers, look your palms. And now release your right hand and look to palm, what's happening? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो, कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं, इसको भी करेंगे तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने, तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हमारे ये हाथ, इसको कलाई को पकड़ लीजिए, रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट, एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड। बहुत अच्छी रेखा है, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लिखे हुए कहाँ है, उसको यहां तो लाओ। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, एंड नाउ व्हेन आई से थ्री वन देन यू विल रिलीज, थ्री टू वन, हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल। सो सो देखिए अब आपके हाथ जो है कितने अच्छे लग रहे हैं। ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा। यस डू इट लाइक दिस। जो ऐसा करोगे तो क्या था आपके हाथों के अंदर में चमत्कार बता देता हूँ। चमत्कार बता दे वहां क्या आएगी तो महाराज जी थोड़ा बहुत चमत्कार करें। ठीक है चमत्कार को
1: नमस्कार।
0: चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं। हाथों नाउ मिरेकल नाउ यू विल हैव ए मिरेकल। यू कैन सिट स्ट्रेट इफ यू वांट सिट इन योगा पोस्चर वज्रासन सुखासन पद्मासन एनी आसन वेर यू फील कंफर्टेबल। अब ये दोनों हाथ जो हमारे हैं लुक बोथ पाम्स। हाँ दोनों हथेलियों के अंदर में थोड़ी रेखा अलग अलग है। अच्छा एक तरफ तो धन आता है लेकिन दूसरी तरफ वो चला जाता है। अरे हाँ वो तो जाना चाहिए लक्ष्मी चंचल है। पानी तो चलता भला बड़ा गंदेला होए। वाह भाई वाह। अब ऐसे करिए हाथों को। अब आपके अंगूठे

गुड अब ऐसे 1 इंच दूर रखो। अब ऐसा करिए, नीडल मूव होगी नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है, और ऐसा करिए धीरे धीरे। वो प्रेशर आता ना, मैग्नेट। और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम। देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन। सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है। कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं। तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल and take all the toxins and the pain out, self healing. To bas aaj to itna hi, that's all for today. Session is over, it was 1.5 hours.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव के सनातन धर्म की। हरिओम। वी हैड ए ब्यूटिफुल सेमिनार।
1: Szép programunk van.
0: We have to learn many things.
1: Sok mindent tanulni valunk.
0: I know that many people don't like what I tell.
1: Sokan, tudom, sokaknak nem tetszik, amit mondok.

अलग पुरुजी महादेव, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन दर, ओम शांति शांति, शांति।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री सुदेव पुरुषा महादेव की, हिमालयन अवतार श्री अलक पुरुषा महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में जिसके निमित्त आयोजन है ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री दीपनारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा, भाग

भाई, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें ये सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं। ये तो ठीक है, संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं। पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है, तो वो भी बच्चों का पालन करती है। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से, कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे, और जा कर के संत जब आते हैं क्या करते हैं? संत आ कर के भगवान से मिलाने का ही कार्य करते हैं। संत हमें परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उस मार्ग को दिखलाते हैं। तो संत जी ने उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया, मैं तुमको कैसा दिखता हूँ? अब उसे न संतों से मतलब था, ना किसी से मतलब था। उसने कहा, महाराज आप तो हमारे जो गांव में बूढ़ा पाड़ा है ना, वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा, अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो, मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, यह नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी एक साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ? बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी, मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए, और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ? महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जा करके फिर वापस आए, तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए, और आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज, वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं? परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो, सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी, और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं, भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं?
एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है। तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज रहते हैं, तो क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि तम, जो अर्जुन है अर्जुन, उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं। तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ मैं अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं, वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज, जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं। तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया। तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है, यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आकर के रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती। महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसे कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली। कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसी कल्पना की महाराज शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनारायण भगवान ने की। तो महाराज परम पिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब, हैं देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है, एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा, और जो जो कल्पनाएँ की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। इसलिए हमको समझने की कमी है, ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है। देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना, तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं,
एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते? लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है, बताओ? पता है ना। तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था? भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया, तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी? एक ही नाव है, और दूसरी बात एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे? प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए, तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते तो महाराज कुछ देना ही होता है आपको, कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है, सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए, अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे भगवान देने लगे तब केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

0: सिया राम। उस केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों क्यों नहीं चाहिए? भाई आपका कार्य क्या है, इस पार से उस पार ले जाना, और ले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपकी पेट पूर्ति होती, परिवार चलता है। कहा प्रभु जो मेरा कार्य है आपका भी वही काम है, आप भी क्या करते हो, इस भवसागर से पार करते हो और मैं भी इस किनारे से उस पार करता हूँ। प्रभु मैंने आपको इस किनारे से उस पार किया है तो आप भी क्या करना, मुझे उस पार कर देना, यही मेरी उत्तर है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो यही मांगो, ये याद कर लो चौपाई, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब तो अब बस आपका अनुग्रह ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ धन संपत्ति दौलत मुझे नहीं चाहिए। आपकी कृपा से पल रहा है, सब काम चल रहा है, बस यही है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए से मन को शांत कैसे करें, प्रभु आप कृपा करें, मेरा मन लग जाए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी इस परम पवित्र सत्संग सभा में आए हैं, और आकर के इस दिव्य सत्संग सभा के जो हीरे मोती है, क्या है, हीरे मोती है, अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलने वाले नहीं है। देखो हमेशा नहीं मिलते हैं, बाबा जी की कृपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और साल में दो तीन अपने ऐसे अवसर आते हैं, और उसमें भी यदि छुट्टी मार दोगे तो महाराज इसका फल मिलने वाला नहीं है। ये परम पवित्र और परम दुर्लभ भी है, तो इस दिव्य सत्संग सभा का आप लाभ लें, आनंद लें, भजनों का आराम तो करना ही है, सोते सोते आधा जीवन बीत गया, आधा और बीत जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए आए हैं तो दिव्य आनंद लें, जब तक शरीर साथ दे, एक दिन की बात है, बाकी की हमेशा रात ही रात है, सोना ही सोना है। इसलिए आज दिव्य आनंद ले, दीपनारायण भगवान की। अब थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल दें, बाबू जी की कृपा से थोड़ी भाषा आई, ये भी लोग सज्जन गुरुभक्त बैठे हैं, तो सैल्यूटेशन टू द डिवाइन, ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा। आई वुड लाइक टू बो हिज होलीनेस अवर बिलव्ड गुरुदेव विश्व गुरुजी होली फिट ऑन द डिवाइन ओकेशन ऑफ महाप्रभु जी एनिवर्सरी। वी आर हैविंग डिवाइन सत्संग ऑन बिहाफ ऑफ महाप्रभु जीज डिवाइन डे, समाधि डे, एंड वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट वन, लकीस्ट वन, दैट वी आर हैविंग दिस सत्संग इन ओम आश्रम, विच इज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ योगा इन डेली लाइफ। हियर अवर डियर ब्रदर महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, ऑल डियर भक्ताज, ऑल द सन्यासीज ऑफ दिस परंपरा, आई वुड लाइक टू से हरि ओम टू एवरी वन एंड वेलकम टू दिस डिवाइन सत्संग। विद द ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी वी आर हैविंग सत्संग एट भक्ति सागर। वी हैव गॉट ऑल्सो ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी टूडे इवनिंग, ही वॉज हियर, ही वॉज ब्लेसिंग अस, वी हैड प्रेयर विद हिम, एंड देन ही सेड ओके यू डू सत्संग, आई एम गोइंग सिटिंग देयर ब्लेसिंग फ्रॉम देयर। सो विश्व गुरु जी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज गिविंग ब्लेसिंग वेर एवर ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अस, ही इज ऑलवेज थिंकिंग दैट वॉट माई भक्ताज चाइल्ड डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। सो विद हिज ब्लेसिंग वी आर ऑलवेज डूइंग, और वी आर ऑलवेज practicing that we do all always good. So the divine satsang we are having here, you know, the great rishis, great saints, they come on this earth not for themselves, but they come for the human being, for the creatures who are suffering from this cycle of birth and death, which is always very hard. We are always trying our best to escape from this cycle, that we can liberate, we can know ourselves for the self-realization. But without guru, without डिवाइन सेंस विदाउट परंपरा वी कैन नॉट नो एनीथिंग. सो वी हैव गॉट अ ग्रेट ऋषि और वी आर बिलोंगिंग टू द ग्रेट परंपरा विच हैज गिवन अस द ग्रेट सेंस एंड द सेंस दे आर शोइंग द डिवाइन पाथ. सो महाप्रभु जी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज शोइंग द वे. यू ऑल हैव मैनी टाइम हर्ड और यू हैव एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ दैट हाउ महाप्रभु जी इज गाइडिंग अस इन एनी वे. आई हैव हर्ड मैनी स्टोरीज फ्रॉम द यूरोप दैट वन कपल देवर गोइंग थ्रू द कार इन द जंगल एरिया और समवेयर बट दे हैव फिनिश्ड द पेट्रोल और डीजल समथिंग एंड दे कुडंट गो फर्दर एंड देन देवर रिमेम्बरिंग विश्व गुरु जी एंड महाप्रभु जी प्लीज हेल्प अस हाउ वी विल गो टू द होम इट्स डार्क ऑलरेडी एंड नो बडी इज हियर देर इज नो पेट्रोल पम्प नियर अस सो प्लीज गॉड हेल्प अस. एंड सडनली सम गाय केम देयर विद द डीजल और पेट्रोल ही गेव देम दिस थिंग एंड दे वर फीलिंग एंड दे हैव गॉट दिस थिंग ऑयल एंड नाउ दे ड्राइव दे वर ड्राइविंग द कार टू द होम. सो दिस इज द ब्लेसिंग वेन दे सो आफ्टर वन मिनट देर इज नो बडी. सो दिस इज द डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ महाप्रभु जी वेन यू हैव अ प्योर प्योर भाव प्योरिटी वेन यू हैव द श्रद्धा विश्वास बिलीव देन इट कम्स टू यू. सो महाप्रभु जी इज ऑलवेज गाइडिंग अस ही इज ऑलवेज गिविंग द डिवाइन ब्लेसिंग्स. आई वॉज टेलिंग दम स्टोरीज अबाउट गुरु कृपा अबाउट गुरुदेव दैट विदाउट गुरुदेव वी कैन नॉट लिव इन दिस लाइफ. विदाउट गुरुदेव वी डोंट नो वॉट टू डू हाउ टू डू वेन टू डू. सो वेन गुरुदेव कम्स इन अवर लाइफ ही शोज अस ईच एंड एवरीथिंग. सो आई वॉज टेलिंग स्टोरीज दैट देर अ सेंट वॉज देयर he was going to a village and there was one person who was not believing in a god in a saints. He was just living life like a animal, you know. What does animal eating, sleeping, having children, this life is animal having. So he was also living like that. So one saint was there, he was thinking that I should give him some knowledge, I should bring him to the God. So he went there and he was asking that, oh human, do you know how do I look, who I am? Then he told, you look like a buffalo, which is in our village. Then that saint thought, still his heart is not clean, he's suffering very hardly, so I should tell him some mantra. So he gave a mantra and he just told, just chant it till 1 year, till I come back. And after 1 year, he went back there. Then he was asking again, so how do I look now? Then he said, okay, yes, now you look like a human. Okay, that saint was happy that mantra is working. He is chanting the mantra. So it's becoming slowly clearing his heart. He's thinking, he's doing. Okay, he said again, okay, I will go and I will come back after some time. So after some time when he came, then he was asking again, how do I look now? Then he told, now you're looking like devas. What do you say, devas? God. Then he, next time when he comes, fourth time, then suddenly when he saw the Guruji, he was not looking. He came and he ran. He just make a dandavat pranam. Oh Gurudev, thank you. Now you are not a human. You are not a human body, but you are God. You have shown me the divine way, divine knowledge that I can now see each and everywhere God. So that is Gurudev. He bringing us from the ignorance to the knowledge, from darkness to the light. So with the blessing of Gurudev, we are also coming to the light. We are also going near to the God. So this is only possible with the blessing of Gurudev. So we all are luckiest one. We are having the divine master in our life. and we should always follow what Gurudev is saying, what he is guiding us, how he is guiding us. So that's why we always thankful to the Gurudev. Please Gurudev, always bless us and guide us in a divine way. So thank you for listening. We are having divine satsang on the occasion of Mahaprabhuji's anniversary. So we will have now some bhajans. We have Sukhya Bhai here, Papuji Garg, all the bhaktas, Indian bhaktas here, Devi Lal ji, Narendra ji, and all children from our school, college, Indian bhaktas here, all karma yogis. So enjoy satsang. Deep Narayan Bhagavan ki, Dev Purishama Dev ki. And I forgot our music teacher, Ashok ji. He's singing very nice, very beautiful bhajans of our parampara, and he's always coming here. So welcome to Divine Satsang, and we will also listen to him. Deep Narayan Bhagavan ki jai. Papu ji garg, kon gayenge bhajan? Aiye gaiye aap log bhajan. Haan, bhai ji gao.
1: बोलिए सदगुरु भगवान की, माता पिता गुरुदेव की जय, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री माधवानंद जी महाराज, अनंत कोटि संत महापुरुषों की।

हरि ओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं, आप लोग प्रसाद लेकर के आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए। हमेशा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से जो मिला है, जो मिला है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य क्या है, सत्संग, सत अर्थात सत्य, जो सत्य है उस सत्य का संग करना, उस सत्य के साथ रहना, उस सत्य के साथ जीना, उस सत्य के साथ चलना, यही क्या कहलाता है, सत्संग। तो सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा नहीं, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है, क्या आप, हम, जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है। देखो आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं, ये तो सत्य नहीं, सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, सपना है। कौन कह रहे हैं सपना है, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं,

मैं जय जय राम। भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, भगवान का भजन, भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब ये तो जगत क्या है, सपना है। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ, सामने तो दिख रहा। महाराज सपना वो होता है जो हो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा, हो भी रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ, सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा है वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है, क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है, और जो तीनों कालों में भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, परम पिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार है, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे। हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराएं।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते। तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान। आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, महाप्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से, ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, वर्षा करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को। दीप नारायण भगवान की जय हो।

देश। श्री दीपनारायण भगवान की, देवपुरी सा महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति।

श्री नारायण भगवान की जय। आज की आनंद की जय। भक्त निमिया राय जी की जय।

0: महाठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिया कर डोले, द रोप हैव इन हैंड टू हैंग यू अप, बट टिल दैट सी हैव वेरी स्वीट लैंग्वेज, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, हाउ टू कैच यू, एंड देन यू आर होल्डिंग लाइक दिस स्नेक इन योर हैंड्स। सो दिस माया, दिस संसारास, देयरफॉर इट इज सेड पतन और उथन, दो बोथ हैज बीन सॉन। सो भगवान विष्णु सेठ, लक्ष्मी देवी गॉडेस, लेट्स गो बैक टू अवर वैकुंठा, दैट इज मच बेटर, सम टाइम टू टाइम नो नारदा कम्स, दैट्स ऑल। एंड सो केम देयर एंड दे वेंट, सो बट बोथ वन सीड, सो द रूट्स आर इन वन, बट वाट इज प्राउड केम आउट, वन इज दिस एंड दैट। सो वाट इज दैट वन? वन इज कॉल्ड संघ, संघ मीन्स द कंपनी, कंपनी। नाउ विच काइंड ऑफ कंपनी यू हैव, नेगेटिव वे और स्पिरिचुअल पॉजिटिव वे? नाउ दिस इज कॉल्ड ओनली वन वर्ड, संघ। नाउ इन द वन वर्ड, वन लेटर, संघ। नाउ बिफोर संघ इफ यू राइट सत, व्हाट बिकम्स? सत्संग। एंड इफ इंस्टेंट ऑफ द सत यू राइट कु, what happens? Kusanga, bad societies. So root is there, but how now the branches will develop, this side or that side? So in the Kali Yuga is a very, very hard, difficult to get good Sangha. There is a lot of sweet words, there are a lot of tricks, but at end there will be nothing. So this one bhajan was Mahaprabhuji's. Then I will not translate all, otherwise morning I have to serve you breakfast here.
1: Yeah, you miss your plane.
0: So therefore